मैं हसीना तुम डाकू मैं हूँ शीशा तुम शीशा पत्थर टकराने दो। आने वाला आएगा जाने वाला जाएगा तुम ना मानो तो जाने दो। तोबा तोबा क्या होगा होना है जो वो होगा होता है जो

कर परमात्मा प्रभु महावीर को जैसा सुधर्मा स्वामी ने अपने अनुभूति में महसूस किया उसी अनुभूति के अनुरूप वो बात करते चले जा रहे हैं और बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में बात करते जा रहे हैं। जी डायमेंशन में हम कभी किसी की बात कर भी नहीं सकते हैं, करने की सोच भी नहीं सकते हैं, जिसकी पहली पंक्ति ठीन से ठान लवसत तबावा, स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति किसी की है तो सप्तम लव का, सप्तम लव यानी 186 का एक प्राण होता है, 7 प्राण का एक स्तोक होता है और 7 स्तोक का एक लव होता है। एक स्तोक 7 लव मैक्सिमम 256 या मैक्सिमम 49 मिनिमम 49 49 अनुत्तर विमानवासी जो देवता भी हैं जिनके संसार में सुख की उत्कृष्ट स्थिति किसी की है तो अनुत्तर विमानवासी देवता की है। सातवें नारके की भी स्थिति 33 सागरोपम है, अनुत्तर विमानवासी देवता की भी स्थिति 33 सागरोपम है, लेकिन लव सप्तमा में अनुत्तर विमानवासी देवता को गिनाया गया, सातवें नारके की स्थिति को उत्कृष्ट स्थिति ने कहा गया। उसके पीछे का छोटा सा रीजन है कि अनुत्तर विमानवासी देवता के स्थिति में कोई जीव एक ही बार जा सकता है, दोबारा नहीं जाता है। वहां जाने के बाद उसको टच करने के बाद वापस मनुष्य जीवन में आकर के उसने मोक्ष में ही जाना है, नो ऑप्शन। 33 सागरूपम के लिए ये स्थिति उनको क्यों मिली, क्या कारण, व्हाट इज रीजन? उनके पास ज्ञान इतना था कि उसी भाव में मोक्ष जा सकते थे, उनकी श्रद्धा इतनी प्रबलतम थी कि उसी भाव में मोक्ष जा सकते थे, उनकी क्रिया उनका पुरुषार्थ वो भी इतना चरम सीमा का था कि उसी भाव में मोक्ष जा सकते थे, उनका तत्व भी इतना शुद्ध था कि उसी भाव में मोक्ष जा सकते थे, उनका उत्साह उल्लास उमंग भी वीर्य शक्ति भी इतनी जागृत थी कि उसी जन्म में मोक्ष जा सकते थे। केवल केवल एक कारण से वो जा नहीं पाए, उन 50 का आयुष्य कम पड़ गया। मनुष्य जीवन का यदि आयुष्य उनके पास उन 50 का होता या 256 का होता, दोनों ही बात में कह रहा हूं कि दोनों धारणा चलती है। इसलिए इतना सा आयुष्य यदि उनके पास होता तो वे मोक्ष में ही होते, वापस उनको देवलोक में रह करके वापस मनुष्य जीवन में गर्भ में आकर के पुनः साधना कर करके फिर पुरुषार्थ करके मोक्ष में जाएंगे, कितना समय लगेगा पता नहीं। केवल उन 50 पहले यदि उन्होंने साधना शुरू करी होती, कितने 100 तो समय नहीं बढ़ा सकते लेकिन पहले साधना शुरू कर सकते थे। उन 50 इतना पहले ही दिव साधना शुरू करते, उतने पहले दिव दीक्षा लेते तो उसी जन्म में मोक्ष जाते, बाकी कोई प्रमाद नहीं, बाकी कोई गलती नहीं। इसलिए
तीर्थंकर परमात्मा जिसकी आराधना उत्तराध्यन सत्र के हम करने जा रहे हैं उसमें 36 टाइम सिंगल लाइन रिपीटेडली इंद्रभूति गौतम को कहते हैं समयम गोयम माम पमाए, समय का परमात्मा कर। ज्ञान में क्या हुआ प्रमाण, आलोचन प्रतिकमन प्रायश्चित से आप मुक्त हो सकते हो। श्रद्धा में कोई प्रमाद किया आप क्षमापना कर करके उससे मुक्त हो सकते हो। चरित्र में कोई गलती हो गई तो प्रायश्चित लेकर के निर्दोष हो सकते हो। तपस्या की भी वही बात है, वीर्य की भी वही बात है, वहां परिमार्जन का अवसर आपके पास है, मेरे पास है, क्योंकि मेरी प्रॉपर्टी ज्ञान दर्शन चरित्र तप वीर्य ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसको मैं बाद में भी करेक्ट कर सकता हूं, कल ने इसी का आ सीख सकता हूं, लेकिन कल का समय वापस मिलने वाला नहीं है। इसलिए बार बार इंद्रभूति गौतम को परमात्मा एक ही बात कहते हैं तो समय का प्रमाण बात कर, बाकी सारे प्रमाद क्षम्य है, बाकी सारे प्रमाद का परिमार्जन हो सकता है, शुद्धिकरण हो सकता है, निर्मल हो सकते हैं, लेकिन समय में क्या हुआ प्रमाद, समय के पास सुनने के कान नहीं, क्षमा करने का दिल नहीं, वो एक ही ऐसी है कि जिसके सामने किसी की कुछ चलती नहीं है। समय को यम्मा पमाए, पुनः एक बार कह रहा हूं, बाकी सभी प्रमादों का, बाकी सभी गलतियों का, बाकी सभी अपराधों का परिमार्जन कर सकते हो, परिष्कार कर सकते हो, शुद्धि कर सकते हो, लेकिन समय में क्या वहां प्रमाद का परिष्कार नहीं कर सकते। इसलिए डिस्कवरी और सेल्फ में एक छोटी सी विधि सिखाते हैं। आज जो शिविर होने जा रहा है आर्ट ऑफ डाइंग का, समाधि शरण का, उसमें भी वो विधि सिखाते हैं। आरंभ में जाके हर प्रोग्राम में वो विधि सिखाता हूं, कितने सीखते हैं आई डोंट नो, कितना लोग उसको प्रैक्टिकल करते हैं आई डोंट नो, लेकिन देख करके पता चलता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सिंपल विधि है कि नींद हो गई, एक सांस भी लेटे हुए नहीं लेनी, तुरंत उठना, एक सेकंड के लिए भी प्रमाद में नहीं रहना, आलस में। नींद खुली हो गई और नींद खुली होने का सिम्टम्स क्या है, आपको सुनाई देने लग गया, इसका मतलब कि नींद पूरी हो गई। आंख खुलने में टाइम लगता है लेकिन सुनाई दी आपको, आवाज सुनाई दी, नींद का सूत्र एक ही है, सुनना बंद हो गया मतलब सो गया है, और सुनना शुरू हो गया इसका मतलब जाग गया, और उसके बाद यदि आप लेटे हुए हैं आलस में तो समय का प्रमाद शुरू हो गया, और वही समय का प्रमाद जब दिन में सुबह शुरू होता है, हो सकता है कि आप लेटे रह सकते हैं लेकिन जागृत, आलस में नहीं, लेजीनेस में नहीं, कि आपकी तुरंत अंतर की साधना उसी समय शुरू हो जानी चाहिए, जाग गए साधना शुरू हो जानी चाहिए, ये उस प्रमाद से बचने का एक छोटा सा मंत्र परमात्मा ने दिया है कि उस समय हाथ में नहीं है, बाकी सब आपकी प्रॉपर्टी है, समय आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। तीन सेठा नवसत तमावा, वो अनुत्तरी मानवासी देवता, यानी दूसरा मीनिंग
जो उसका छिपा हुआ अर्थ है वो इतना ही है कि जितनी जितनी ज्यादा देर करी उतने उतने नीचे के देवलोक में गति हो गई। जितनी देर करी अनुत्तरी मानवासी की यह स्थिति है, उसके पहले के देवता ने और पहले लेट किया, उसके पहले के और लेट किया, और लेट करने की तो अब है वो तो थोड़े मिनट लेट कर, हम कहीं दो मिनट लेट हुए तो कई फर्क पड़े। बहुत बार मैंने वो प्रयास किया कि कहो कि लेट हो तो क्लास में मत बैठो, लेकिन एक सुंदर सी बात आपको बताना चाहता हूं। अनुशासन करने जाते हैं तो एक ही में से जाता है कि महाराज साहब गुस्सा करते हैं, और आप जैसे जीते हो वैसे स्वीकार करते चले जाओ तो महाराज साहब बहुत अच्छे हैं। नहीं, वेरी क्लियर है मैसेज। और मैं कई बार बोलता हूं, मैं उस स्कूल का टीचर हूं कि जिसमें टीचर को टाइम के डिसिप्लिन फॉलो करना कंपलसरी है, स्टूडेंट को टाइम के डिसिप्लिन फॉलो करना मन मर्जी, वो कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है, नहीं भी आ सकता है। स्टूडेंट को डिसिप्लिन टाइम के नहीं, ऐसे स्कूल का रिजल्ट क्या आ सकता है यह आपको भी पता है, जहां स्टूडेंट को डिसिप्लिन नहीं, टीचर को डिसिप्लिन है। टीचर ने टाइम पर आना चाहिए, टीचर ने टाइम पर शुरू करना चाहिए, टीचर ने टाइम पर पूरा करना चाहिए। हम कभी भी आ सकते हैं, हम कभी भी जा सकते हैं, हम फ्री हैं, ऐसे स्कूल का रिजल्ट क्या आएगा। और ये उस संघ में चल रहा है, ये उस समाज में चल रहा है, ये उस धर्म शासन में चल रहा है जिसमें भगवान महावीर अपने इंद्रभूते गौतम को बार बार कहते हैं, समयम गोयम मा पमाय, पमत्तस सवो भयम अपमत्तस नत्थि भयम। प्रमादी व्यक्ति को चारों तरफ से भय है, अप्रमादी व्यक्ति को कहीं से भी भय नहीं। ये जिन जिन शासन का उद्घोष है वह इतना प्रमाद चलता है। कोई समर्पण चतुर्मास समिति के ट्रस्टी हर्ट नहीं हो, मैं उत्तराध्यन के सुदेव की आराधना के लिए पॉलिसी व्यवस्था डिक्लेयर करने के लिए पजुसन के समय से कह रहा था कि उस समय नाम ले लेते हैं। उस समय से नाम लिए होते हैं तो मेरी सारी मीटिंगें आराम से टाइम पर पूरी हो जाती, अब टाइम नहीं। काम तो करना है, काम तो करना है, लेकिन समय पर नहीं करना है। उसी के परिणाम है, उसी के परिणाम है। सातवीं नारकी में कौन जाता है और अनुत्तरी मानवासी देवता देवलोक में कौन जाता है, वापस समझ लेना बात को। अनुत्तरी मानवासी देवलोक में वो जीव जाते हैं जो शुभ काम करने में देर करते हैं। कितनी देर? इतनी सी देर। सातवीं नारकी में वो जीव जाते हैं जो पाप काम करने के लिए एक सेकंड की देर नहीं करते, एक सेकंड की देर नहीं करते। गुस्सा आया हो गया, वहां देर नहीं करते। मारने का मन हो गया, मार दिया, वहां देर नहीं करते, वहां वो टाइम लेते नहीं। अशुभ के लिए समय वे नहीं करते हैं और शुभ के लिए समय समय पर लगाते नहीं। इसलिए जब तीर्थंकर महावीर की तरफ वो देखते हैं
इतना ही महसूस कर रहे, इतना ही महसूस कर रहे। किठीन सिठ लवसत तमावा, कि जैसे अनुत्तर बन वैसे देवता संसार में उत्कृष्ट स्थिति वाले, कौन सी उत्कृष्ट स्थिति? सुख की, तत्व चिंतन की। ऐसा कहते हैं कि तेतीस अंगरूप में जीने वाले वो देवता जैसे देवलोक में उत्पन्न होते हैं, उठे कहीं नाच गाना कोनी। अनुत्तरी वनवासी देवता में कोई देविया नहीं आती भी नहीं, जन्मती भी नहीं, जाती भी नहीं। वहां पर वहां कोई डांस नहीं। तैतीस पखवाड़े के बाद तो सांस लेते हैं, कोई नाच नहीं, कोई डांस नहीं, कोई गाना नहीं, कुछ नहीं। फिर किस में आनंद लेते हो? एक तत्व का चिंतन शुरू करते, कितना? नौ तत्व है ना, नौ तत्व में से एक तत्व का चिंतन शुरू करते हैं और तैतीस सागरोपम के समय तक एक ही तत्व का चिंतन चलता है। और उस तत्व चिंतन के दौरान यदि कहीं गाड़ी उनके अटक गई तो वहां से ही तीर्थंकर परमात्मा के पास या केवली के पास अपनी जिज्ञासा मन से ही भेजते, मोस्टली तीर्थंकर के पास। और तीर्थंकर परमात्मा उनकी जिज्ञासा का जवाब मन से ही देते हैं। जिसको आप टेलीपैथी कहते हो, लेकिन ये तो एक वेरी डिफरेंट टेलीपैथी। वहां से सवाल पूछा है, वहां से जवाब दिया। क्यों? ऐसा जवाब देने के लिए उतना ही मनोयोग शक्तिशाली लगता है। प्रणीत मनोबल, प्रणीत मनोबल, प्रणीत यानी बहुत पुष्ट मन लगता है। वहां से वो ना तो तीर्थंकर के पंच कल्याणक में आते हैं, धरती पर आने का काम नहीं। बस जहां जन्मे ना तो कोई नंदनवन में जाते हैं ना कहीं नहीं जाते। क्यों? कि जितनी गहरी सांस होती है उतना आनंद अधिक होता है। चलते चलते जानकारी देते जा रहा हूं कि आपको लगता है कि श्वासोच्छ्वास के आधार पर आयुष्य का परिमाण चलता है, बहुत लोगों की धारणा है ना? लेकिन आप ध्यान में रखिए, तैतीस सागरोपम की स्थिति अनुत्तरी मनवासी देवता की भी है और तैतीस सागरोपम की स्थिति सातवीं नारकी की भी है। तैतीस सागरोपम की स्थिति में अनुत्तरी मनवासी देवता जितनी श्वास तुम 100 साल में 75 साल में लेते उतनी श्वास भी तैतीस सागरोपम में नहीं लेते हो। और नारकी के जीव जितने श्वासोच्छ्वास तुम 24 घंटे में लेते हो, जितने श्वासोच्छ्वास तुम 24 घंटे में लेते हो उतने वो 24 मिनट में ले लेते हैं। जैसे धोकनी चलती ना, धोकनी जैसा दमा का पेशेंट, वैसी वहां की श्वासोच्छ्वास चलती है। बहुत श्वासोच्छ्वास चलते हैं वहां पर, लेकिन आयुष्य उतना है 33 सागर बाप का है। इस सब श्वासोच्छ्वास का संबंध आयुष्य कर्म के साथ नहीं, तो श्वासोच्छ्वास का संबंध आपके अंदर के संयम के साथ, आपके अंदर के पीस ऑफ माइंड के साथ, आपके अंदर के पेशेंस के साथ, आपके अंदर के ज्ञान के साथ, आपकी श्रद्धा के साथ, आपके आनंद के साथ है। ऐसे जैसे जैसे ऊंचे ऊंचे देवलोक में जाते हैं वैसे वैसे श्वासोच्छ्वास लंबा होता है। क्या लंबा होता है? जितना दीर्घ श्वासोच्छ्वास होता है उतने उच्च देवलोक में, और जितना कम समय में श्वासोच्छ्वास ले उतने नीचे देवलोक में। तब प्रयास कर सकते हैं आप लोग कि अपना श्वास थोड़ा सा, और अभी ये सबसे बड़ी समस्या चल रही है शालो ब्रीदिंग, और शालो ब्रीदिंग का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है अब कि जब मैंने गर्भ संस्कार का कार्यक्रम शुरू किया था तो मुझे डीपली ब्रीदिंग करने के लिए कहना नहीं पड़ता था।
लेकिन अभी जब मैं शिविर ले रहा हूँ तो मैं स्पेशली उनको कहता हूँ माँ बाप को कि तुम सर अपने श्वासोश्वास पर ध्यान दो। क्यों? कि जो अरुण बेबी अभी मेरे पास आते हैं उनका भी अबडोर्नमल ब्रीदिंग नहीं हो रही है, उनकी भी अबडोर्नमल ब्रीदिंग नहीं हो रही है। पहले बच्चों की ब्रीदिंग बिल्कुल आराम से पेट नीचे ऊपर होता था, अभी उनका भी नहीं हो रहा है, क्योंकि माँ का नहीं तो उनका नहीं, और फिर बाकी सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। तो ठीन सेठा लवसत तमावा सभा स्वमाव सभा न सेठा। सभा में श्रेष्ठ सभा कोई है तो देवलोक की इंद्र की सुधर्मा सभा, सुधर्मा सभा है ना, कि जहां पर किसी भी प्रकार का देवलोक में भी ऐसी सभा है, ऐसी जगह है, देवलोक में भी लाइब्रेरी है, देवलोक में भी लाइब्रेरी है, पूरा जिक्र गया है जम्बुद्वीप पनपते में, वहां किताबें कैसी है, पूरा वहां भी लाइब्रेरी का कोष है, वहां पर भी जहां पर परमात्मा की भक्ति हो सकती है ऐसी जगह है। तो वो सुधर्मा सभा, सारी सभा देव सभा में, देवलोक में सभाएं बहुत है, अलंकार सभा भी है, ब्यूटी पार्लर, अलंकार सभा है ना, ब्यूटी पार्लर, युद्धशाला भी है, शास्त्रागर भी है, नृत्य सभा भी है, सभी सभाएं सभी प्रकार के हैं, लेकिन श्रेष्ठ कौन सी? सुधर्मा सभा। ठीन सेठा लवसत तमावा सभा सुमाव सभा न निवान सेठा जसौव धम्मा। चाहे जैन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी धर्म में यदि चर्चा चलेगी तो एक ही चर्चा चलेगी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना। कोई भी धर्म में जाएंगे तो उनका लक्ष्य क्या है कि बस परमानेंट में जाओ, वैकुंठ में जाना है, हिंदी में क्या बोलते हैं, वैकुंठ में जाना है, वो बोलते हैं हेवन में जाना है ना? तो कोई कहता है प्रभु राज्य में जाना, यानी सभी का लक्ष्य जो है, सभी धर्म किसकी बात कर रहे हैं, मोक्ष की बात कर रहे हैं, रियल मोक्ष की बात कौन करता है? निर्वाण सेठा जसव धम्म, सभी धर्मों में निर्वाण को ऊपर श्रेष्ठतम कहा गया है, लेकिन दूसरी सारी चर्चा आज नहीं करता हूं, लेकिन ध्यान में रखना कि स्वर्ग ये मोक्ष नहीं है, स्वर्ग ये मोक्ष नहीं है, और मोक्ष में गया हुआ जीव वापस आता नहीं है, अपुनरावृत्ति, और इसको लेकर के बहुत लंबी चर्चा है, तुम उसमें नहीं उलझो उतना अच्छा है ना। थे पकते इतो देखो कि मैं उठे पुग जाओ, बाकी तो छोड़ दो थे, बाकी टेंशन नहीं, थाने तो जन संसार में रेवनो है ना, घना सारा काम बाकी है ना, थे निकल जाओ ना तुझे संसार काम कौन करेगा ना, थे नहीं या तो तुझे सब संसार बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। हेलो हाँ, नहीं नहीं नहीं, सगड़ा नहीं, पक्की धारणा है, बे नहीं रियो ना, काम रुक जाए ना, रुके कौन ही मन ही मालूम है, पर मैं थका धारणा ही बात कर रही हूं, अब मैं आपके मेंटेलिटी की बात कर रहा हूं, मरसम नहीं रियो ना तो काम कौन करेगा। हाँ, वो ये घने मस्त धारणा है, गुरुदेव ने कहता था, पहले वो बैलगाड़ी के नीचे वो कुत्ता चलता था ना, वो बिल्कुल उस छाव के नहीं धुरी के नीचे चलता था, कि उसको ऐसा लगता था गाड़ी मैं खींच रहा हूं, गाड़ी मैं खींच रहा हूं, वैसा अपने को भी लगते रहता, गाड़ी मैं खींच रहा हूं, मैं नहीं रहा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं। थे कितो ही ना के हो, कितो ही ना के हो, लेकिन करीबन करीबन सगड़ारा मन में एक चिंतन पक्को है, मैं है मनुन चाल रही है। हेलो, यस, है ना, मनुन के थाने तो घना काम है, थका घना काम बाकी है। निर्वाण सेठा जसव धम्मा, ये अंदर निर्वाण है ना, शांति, परम शांति, वापस
कर्म की ज्योत जलने का अवसर नहीं, उसको कहते निर्वाण परम मोक्ष। वो सारे धर्मों का लक्ष्य वही है। नाय पुत्ता परमत्थि नारी, जैसे निर्वाण सर्वश्रेष्ठ है, जैसे सुधर्मा सर्वश्रेष्ठ है, सुधर्मा सभा सर्वश्रेष्ठ है, वैसे संसार की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति किसी की है, संसार की स्थिति में सर्वश्रेष्ठ स्थिति किसी की है तो अनुत्तर मानस देवता की है। वैसे परमात्मा तीर्थंकर महावीर से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं। ये कौन कह रहा है? सुधर्मा स्वामी कह रहा है ना। अच्छा हुआ कि आप जैसे मेरे जैसे उनको कोई पूछने वाले नहीं थे कि तीर्थंकर भी केवल ज्ञानी है और बाकी भी केवल ज्ञानी है। तो आप कैसे कह सकते कि केवल ज्ञान का तो मीनिंग है क्या है? सबका ज्ञान, सर्वज्ञ का सबका ज्ञान कम ज्यादा होता है क्या? नहीं, सर्वज्ञ का ज्ञान तो सबका इक्वली होता है। फिर आप कैसे कह सकते हैं नाय पुत्र परमथि नानी? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि तीर्थंकर महावीर से बढ़कर के परम ज्ञानी कोई नहीं? केवल ज्ञानी है, भगवान महावीर के शासन में है, उस समय भी केवल ज्ञानी थे। फिर केवल ज्ञानी है मतलब उनके लेवल के है। फिर क्यों तीर्थंकर परमात्मा को कहा गया परमथि नानी? क्या कारण? व्हाट इज द रीजन? केवल ज्ञान सबका इक्वल है। और केवल ज्ञान में तो आप कह नहीं सकते कि इसका केवल ज्ञान 19 है, उसका केवल ज्ञान 21 है, ऐसा कह नहीं सकते। केवल ज्ञान तो सबका इक्वल है। फिर आप कैसे कह सकते नाय पुत्र परमथि नानी? तीर्थंकर महावीर के पास जो ज्ञान है वैसा ज्ञान परम ज्ञान है। व्हाट इज द रीजन? थोड़ा चलाओ चीजें, ज्यादा नहीं, थोड़ा तो चलाओ, थोड़ा दूजा करने कम चलाओ, आठे थोड़ा ज्यादा चलाओ। तीर्थंकर नाम कर्म ज्ञानी की बात चल रही, किसकी बात चल रही? ज्ञानी की बात चल रही है ना। उस समय भी केवल ज्ञानी थे, भगवान पार्श्वनाथ के संग में केवल ज्ञानी थे है ना। लेकिन केवल ज्ञानी को पता भी था कि चंद्रकोशिक है, चंद्रकोशिक है, केवल ज्ञानी को पता था। यह भी पता था कि चंद्रकोशिक को यदि कोई जगा सकता है तो जाग सकता है। चंद्रकोशिक को कोई जगाएगा तो जाग सकता है, कोई सुधारेगा तो सुधर सकता है। ये भी वो जानते थे, नहीं जानते थे। लेकिन कोई कौन केवल ज्ञानी गया वहां पर? नहीं गए। क्यों? कोई जगा सके मैं क्यों नहीं जगाऊं? लेकिन तीर्थंकर महावीर के पास जिस समय वो सामर्थ्य आया, कोई दीक्षा लेते ही भगवान महावीर वहां नहीं पहुंचे। दीक्षा लेने के बाद लंबे समय तक, काफी समय तक, करीबन 1-1.5 साल तक अपनी आंखों को, अपने पूरे शरीर को प्रिपेयर किया कि चंद्रकोशिक के पास जाकर के उसको सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुरक्षित करना जरूरी था कि मैं वहां जाऊं, उसका जहर का आसर मैंने पड़ गया। पहली शर्त क्या थी? कि चंद्रकोशिक को सुधारना है तो उसके जहर का आसर स्वयं पर नहीं होने देना है। दूसरे के गुस्से को सुधारना है तो उसे गुस्से का आसर अपने पर होने नहीं दोगे तो सुधार सकूं। उसके लिए केवल बात मेंटली नहीं थी, उसका गुस्सा कोई केवल इमोशनल नहीं था, उसका गुस्सा प्रैक्टिकल था, उसका जहर तो प्रैक्टिकल बाहर आता था। वो जहर से सबसे पहले शरीर को सुरक्षित करने के लिए अपने सोमवर की स्थिति को, अपने कायसर्ग की स्थिति को उस लेवल पर लेकर के गए। सेकंड उनकी साधना चली कि कैसे मैं बिना बोले केवल अपनी लेशा के माध्यम से, अपनी आंखों के माध्यम से उसके पास मैसेज पास कर सको। स्किल कोई केवल ज्ञान का विषय नहीं है इसमें, स्किल प्रयास पूर्वक है, उद्बोधन पूर्वक है, उसके लिए एफर्ट्स लगते हैं। इसलिए क्यों कि सामान्य केवल ज्ञानी होते हैं
और तीर्थंकर का केवल ज्ञान ये ऐश्वर्यशाली ज्ञान होता है। कैसा होता है? ऐश्वर्यशाली ज्ञान होता है। क्या अंतर है ऐश्वर्यशाली में और श्रीमंत होने में? बहुत सारे दुनिया में श्रीमंत होते हैं लेकिन दानी श्रीमंत नहीं होते। श्रीमंत है, पैसे की कमी नहीं है, पैसा बहुत है और पैसा निकलता भी, जब चुनाव आता है तब तो पैसा निकलता है। नेताओं के पास कितना पैसा है लेकिन कब निकलता है वो? दुष्काल में निकलेगा उनका पैसा कि दुष्काल में पैसा इकट्ठा करेंगे? वो इकट्ठा करेंगे। पैसा कब निकलेगा उनका? चुनाव के समय में। और जो करुणाशील है उसका पैसा कब निकलेगा? उसको ऐश्वर्यशाली कहते हैं। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने तीर्थंकर परमात्मा को कहा, ना ना ये पुत्ता परमथ्य नानी, उनसे बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान केवल जानता नहीं है, केवल जानता नहीं है। तो जानने में इस प्रकार के सूत्र लगा रखे हैं कि उनके ज्ञान में वीर्य भी लगा हुआ है, वाग वीर्य भी लगा हुआ है, मनो वीर्य भी लगा हुआ है, काया का वीर्य भी लगा हुआ है। तीनों वीर्य लगे, कितने वीर्य लगे? काया का यानी काया के वीर्य को काया बल कहते हैं, मनोवीर्य को मन का उत्साह कहते हैं, है ना, वाक वीर्य को प्रभावशाली देशना कहते हैं। ये सारी शक्ति भी उनके ज्ञान में लगी हुई है। वो केवल वाच्य केवल दिमाग से ज्ञानी नहीं है, केवल आत्मा से ज्ञानी नहीं है, केवल भावना से श्रद्धाशील नहीं है, तो उनकी श्रद्धा सर्वव्यापी है। इसलिए सुधर्मा स्वामी ने कहा, न नाय पुत्ता परमथ्य नानी। क्या लेके जाएंगे आज? एक सूत्र तो लेके जा सकते हैं, प्रैक्टिकल कर सकते हैं, आसान नहीं है मैं तो जानता हूं, लेकिन कर सकते हो। नींद खुलते ही जागृत, पूरा जागृत, पूरा जागृत, एक पल भी प्रमाद में नहीं बिताओगे तो बहुत आनंद आएगा, बहुत मंगल होगा, बहुत सुंदरता रहेगी, बहुत शिव की यात्रा कर सकोगे, सत्य की यात्रा कर सकोगे। अच्छे काम के लिए देर नहीं करना और बुरे काम के लिए जल्दी नहीं करना। हेलो, क्या अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए समझी की भाषा? पूरा शीर्षासन हो गया ना, अच्छे काम के लिए बुरे काम के लिए। हाँ, खावन में जल्दी नहीं करनी, उपवास में देर नहीं करनी, कहीं खावन में जल्दी नहीं करनी, उपवास में जिसको मन में आवे ना पचका उन्हें देर नहीं करनी, खावन में 10 मीटर का बार है, 10 मीटर। ये समय की उनोदरी है। किसकी उनोदरी? हाँ, ये समय की उनोदरी है कि 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट लेट खाया, ये उसकी उनोदरी है ना। तो ये उनोदरी करो, देने अच्छे काम में बोलो, बुरे काम में अब सच बताओ, जिनेश्वरी की आराधना से बढ़कर के जिंदगी में अच्छा काम कोई, निर्वाण कल्याण की आराधना से बढ़कर अच्छा काम कोई, तो उसके बाजे बजाने में देर करने की जल्दी करनी? अभी नहीं बोलो ना, घनाशा है ना। हाँ, आप नहीं थे, अच्छा हुआ आप बाद में आए, पहले भूल दिया मैंने आपके विषय में। मैं जल्दी करने के लिए कह रहा था पजुसन के समय से, है ना, कराना टाइम है, कराना टाइम है, कराना टाइम है, ऐसा ही मामला। अच्छे काम में बुरे काम में जल्दी नहीं करना। तो निर्वाण कल्याण के बाजे बजाने में देर है। जिस जिस गोत्र ने, जिस जिस परिवार ने, यदि आपके नाम में
कल नाम पढ़ करके सुना देता हूँ जो जो आए हैं।